0: यो का ट्रेडिशनल मैंने कह बिल मकाई डेक के में एवरीडे 5 AM का 6 PM जनरल ऑल ऑलरेडी होगा
1: जस्ट अ जनरल आइडिया
2: Let's start again. Oh, yeah.
3: One, two, one.

यो का ट्रेडिशनल मैंने कहे बिल्मा का ये डेक में एवरीडे 5 AM का 6 PM तीन अलग रेडियो का